0: अपने नामांकन विवरण अपडेट करने होंगे या मतदान के लिए अपना नाम दर्ज कराना होगा। aec.gov.au पर जाएं या AEC के किसी भी कार्यालय से अपना नामांकन फॉर्म ले लें और सोमवार को रात 8 बजे से पहले उसे भरकर AEC को भेज दें। आपके वोट से ऑस्ट्रेलिया का स्वरूप बनाने में सहायता मिलेगी। चुनाव आयुक्त कैनबरा द्वारा अधिकृत।
1: 연방 선거일이 발표되었습니다. 최근 개명 혹은 주소 변경을 했거나 18살이 되었거나 호주 시민권자가 된 성인은 월요일 오후 8시까지 본인의 등록사항을 업데이트하거나 선거인 등록을 마쳐야 합니다. ac.gov.au를 방문하거나 AEC 사무소에서 등록 양식을 받아 월요일 오후 8시까지 작성된 양식을 AEC에 제출하세요. 여러분의 투표가 호주의 미래를 만듭니다. 캔버라 선거관리위원회 위원장의 승인을 받았습니다.
2: 您准备好投票了吗？联邦大选的日期已经公布。如果您最近更改了姓名或地址，或刚满18岁，或者新晋成为澳大利亚公民，您必须更新自己的登记资料，或在周一晚上8点前登记参与投票。请访问 aec.gov.au 或前往任何一个澳大利亚选举委员会办事处索取登记表，并在周一晚上8点前填好寄回。您的选票将帮助打造澳大利亚的未来。选举专员于堪培拉授权。
3: 98.5 2 000 FM.
4: Resilience and Wellbeing Radio, sharing to you music for you to be able to just relax at this time and enjoy the moment.

0: Radio 2098.5 FM Community Program.
1: सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM.
0: Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements.
1: स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में. आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं.
0: Radio 2098.5 FM, Multicultural Radio.
2: आज रविवार युगा 5126 कलयुग विक्रम संवत 2083 शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 17 मई 2026 है. दर्पण के सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूनम की नमस्ते. इस सप्ताह के समाचार किस प्रकार हैं? धरती तप रही है और आसमान आग उगल रहा है. मौसम विभाग के अनुसार भारत के 17 शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस को पार करेगा. इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा गर्म इलाका भारत का ही है. सबसे ज्यादा तापमान राजस्थान के बाड़मेर में दर्ज किया गया. यहां 48 डिग्री सेल्सियस तापमान है. पीएम मोदी की अपील के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया. अब मुख्यमंत्री के काफिलों में गाड़ियों की संख्या कम होगी और दौरों के दौरान कोई वाहन रैली नहीं होगी. ईंधन बचत और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों को भी कम वाहन उपयोग करने के निर्देश दिए हैं. इस फैसले को सादगी और जिम्मेदार प्रशासन की दिशा में बड़ा कदम माना गया है. पीएम के अभियान में डीएम पीलीभीत ने अनूठी पहल की. खुद की सुरक्षा में लगे वाहन को हटाया और अफसरों को पैदल दफ्तर आने का निर्देश दिया है. मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का निधन हो गया. वे 38 वर्ष के थे. उनके निधन पर यूपी के सीएम योगी ने दुख जताया. प्रतीक यादव को लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में मृत अवस्था में लाया गया. उनकी मौत का कारण अभी एक रहस्य है, जिसे सुलझाने की कोशिश चल रही है. बीते रविवार को पहली बार पीएम मोदी ने देश के लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की और 24 घंटे के भीतर ही अपनी इस अपील को दोहराया भी. अब सरकार ने गोल्ड को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है और इस पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी में तगड़ा इजाफा कर दिया है. गोल्ड इंपोर्ट को 6% से बढ़ाकर सीधे 15% कर दिया है. इसका मतलब विदेश से आने वाला सोना बहुत महंगा होगा. यह बढ़ा हुआ रेट 13 मई से लागू कर दिया गया है. इस सारी प्रक्रिया के पीछे विदेशी मुद्रा की बचत करना है. गुजरात सरकार ने मंगलवार 12 मई को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 72 आईएएस अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों का आदेश जारी किया है. इस फेरबदल में अहमदाबाद, सूरत, भरूच और कच्छ समेत कई अहम जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं. सरकार ने नई जिम्मेदारियों के साथ कई वरिष्ठ अधिकारियों को महत्वपूर्ण विभागों में तैनात किया है. बता दें कि मार्च 2026 में भी 37 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ था. पीएम मोदी ने 28 मार्च 2025 में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था. यह एयरपोर्ट 15 जून से अपना कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करेगा. एयरपोर्ट टैरिफ रेगुलेटर AERA ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए यूजर डेवलपमेंट फीस तय करी है. यह फीस घरेलू यात्रियों के लिए ₹980 होगी. यह यूजर डेवलपमेंट फीस वित्त वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए ही तय की गई है. एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक रिलीज में बताया कि घरेलू यात्रियों के लिए फीस ₹210 होगी, जबकि आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए यह राशि ₹420 होगी. कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी गुरुग्राम के वेदांता हॉस्पिटल में माइनर सर्जरी के लिए एडमिटेड हैं. इससे पहले भी मार्च में उनकी तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती थी. बताया जाता है कि उन्हें लंग्स के संबंधित परेशानी चल रही है। ताजा घटनाक्रम में देखें तो सोनिया इस समय केरला में सरकार गठन को लेकर अहम भूमिका निभा रही हैं। हाल ही में विधानसभा चुनावों में केरला में यूडीएफ की जीत हुई है, जिसके बाद वहां कांग्रेस सरकार बनने के लिए कवायद कर रही है। इसके लिए दिल्ली से तिरुवनंतपुरम तक कई दौर की बैठकें जारी हैं। तमिलनाडु की सियासत के पिछले दिनों से जारी हाई वोल्टेज ड्रामा का अब अंत हुआ, जब विधानसभा में एक फ्लोर टेस्ट में मुख्यमंत्री विजय ने अपनी सत्ता बरकरार करते हुए बहुमत साबित कर दिया। उनके पक्ष में कुल 144 विधायकों ने वोट किया, जो बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है। सरकार के खिलाफ 22 वोट पड़े, जबकि 5 विधायकों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर चिंता बढ़ी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कुछ समय पहले संकेत दिए थे कि अगर पश्चिम एशिया का संकट लंबे समय तक जारी रहा तो सरकार को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, ऐसे में तेल महंगा होने का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता की जेब पर पड़ता है। इसी बीच 15 मई को पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए गए हैं। अब देश के प्रमुख शहरों में डीजल की कीमतों में 3 रुपए से लेकर 3.60 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी है। पेट्रोल के दामों में भी 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद पेट्रोल 97.77 रुपए पर लीटर मिल रहा है। हर शहर में पेट्रोल का अलग अलग रेट है। सबसे ज्यादा डीजल भुवनेश्वर में बढ़े हैं, वहाँ डीजल का रेट 3.60 रुपए प्रति लीटर है। दिल्ली में बढ़ती ई रिक्शा की संख्या, ट्रैफिक जैम, नियमों की अनदेखी को करते हुए दिल्ली सरकार ने 15 मई से ई रिक्शा पॉलिसी लागू की है। सरकार का दावा है कि पॉलिसी से सड़क सुरक्षा बढ़ेगी, अवैध ई रिक्शा पर लगाम लगेगी और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा। अब केवल ई रिक्शा खरीद लेना ही काफी नहीं, सड़क पर ई रिक्शा चलाने के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट, ट्रांसपोर्ट विभाग की ट्रेनिंग और नए नियमों का पालन करना होगा। सरकार का तर्क है कि जब ई रिक्शा मालिक खुद वाहन चलाएगा तो यह नियमों का पालन अधिक जिम्मेदारी से करेगा। भारतीय उद्योगपति गौतम अदानी, उनके बिजनेस ग्रुप समूह के लिए अमरीका से बड़ी राहत की खबर आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमरीकी प्रशासन गौतम अडानी के विरुद्ध चल रहे घूसखोरी और फ्रॉड से जुड़े मामले को समाप्त करने की तरफ बढ़ रहा है। भारत के कार्गो शिप हाजी अली पर ओमान की खाड़ी के पास ड्रोन हमला हुआ, जिसके बाद जहाज समुद्र में डूब गया। अब ईरान की तरफ जा रहे एक संयुक्त अरब अमीरात के जहाज को भी जब्त कर लिया गया है। खेल समाचारों में विराट कोहली, जिनका बल्ला आईपीएल 2026 के पिछले 2 मैचेस में खामोश देखने को मिला, वह कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में जमकर बोलते हुए देखने को मिला। कोहली ने इस मैच में एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो उनसे पहले कोई भारतीय खिलाड़ी T20 क्रिकेट में नहीं कर पाया। विराट ने जब अपनी पारी का 78वां रन पूरा किया तो उसी के साथ वह T20 क्रिकेट में 14,000 रनों का आंकड़ा पूरा करने वाले छठे खिलाड़ी बन गए हैं, जिसमें वे पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने यह इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा का नाम है। फिल्मी बातों में आदित्य धर की फिल्म धुरेंदर ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 4 महीने तक राज किया। इससे दोनों पार्ट्स 2-2 महीने तक थिएटर्स में लगे रहे, खूब कमाई की है। इस फिल्म से वर्ल्ड वाइड 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का ग्रॉस कलेक्शन किया। सिर्फ फिल्म में ही नहीं बल्कि इसके गाने भी अब ब्लॉकबस्टर साबित हुए हैं। इसके म्यूजिक कंपोजर शाश्वत सचदेव के गानों ने यूट्यूब समेत कई सारे प्लेटफॉर्म से करोड़ों रुपए कमाए। एक रिपोर्ट के अनुसार दोनों फिल्मों के गानों ने मिलकर म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से करीबन 325 करोड़ यानी कि $39 मिलियन कमाए हैं। बिलबोर्ड चार्ट पर टॉप 200 में भी इस फिल्म के गाने शामिल है। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। यह समाचार लिखे जाने तक दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक सोने का भाव 48,800 रुपए प्रति 10 ग्राम है। डॉलर की विनिमय दरें इस प्रकार हैं: अमेरिकन डॉलर 95 रुपए 95 पैसे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 78 रुपए 99 पैसे। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त हुए।
3: धन्यवाद पूनम जी। श्रोताओं, आज मैं यतिंद्र गुप्ता आपके साथ में हूँ। हमारा प्रोग्राम 9 से 11 बजे तक चलेगा। श्रोताओं, आज मन बहुत दुखी है। जैसे कि मैंने अपने मैसेज में लिखा था कि आज का प्रोग्राम जीवन के दूसरे पहलू की तरफ है, जिसको आप सैड कह सकते हो। हमारे बीच में एक बच्चा नहीं रहा। हमारी एक टीम के सदस्य होते थे, उनका ये होनहार बेटा जो 19 साल का था, वो नहीं रहा। हम व्यक्तिगत उस पर नहीं जाएंगे, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन उसने मुझे एक प्रभावित करा और एक ईमानदारी से उसको जीना भी चाहिए कि जो आपके अंदर चल रहा है, कभी कभी खुशी अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, उस पल को जीना भी हमें आना चाहिए। आज का विचार कुछ इस तरीके से है। हर बच्चा धरती पर एक किरण बन के आता है। कुछ किरणें ज़्यादा देर टिकती हैं, पर आसमां को रोशन करने के लिए वो कुछ किरणों को ले जाती हैं अपने साथ। एक मैं काल्पनिक नाम दे रहा हूँ, रोहन। रोहन चला गया, पर उसकी हंसी वो अब इसी घर, इसी वातावरण में, हवा में है। श्रोताओ, आज हम पहेली भी रखे हैं। पहेली यही है कि जो पेरेंटहुड के ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं वो लिखें। अपना भी अनुभव बता सकते हैं, क्या आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है? हम जीतने वालों को, तो दो जीतने वाले होंगे और दोनों को कृष्णावतारम के पास मिलेंगे। हर पास में दो टिकट होंगे। तो श्रोताओ, ये भजन सुनते हैं और उसके बाद में आप लोगों से बात करेंगे। अगर कोई मुझे फ़ोन भी करना चाहे, मुझे फ़ोन कर सकता है। मेरा नंबर है 04215907910421 04215907910। या मुझे व्हाट्सएप का जो ग्रुप है हमारा, उस पर भी संदेश लिख सकते हैं। आपकी कॉल का भी मुझे इंतज़ार रहेगा, अगर कोई भी मुझे कॉल करना चाहे।

0: दर्पण रेडियो सुन रहे सभी श्रोतागण को प्यार भरी नमस्कार। क्या आप अपने प्रियजनों के लिए भरोसेमंद और स्नेहपूर्ण देखभाल की तलाश में हैं? श्री ओम केयर में हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान, गरिमा और घर जैसा माहौल देते हैं। हमारी सेवाओं में शामिल हैं इन होम केयर, डिसेबिलिटी केयर और डेमेंशिया व अल्जाइमर सपोर्ट, साथ ही स्पेशल सपोर्ट, एडवाइजरी सर्विसेज और सांस्कृति व भाषा के अनुसार विशेष देखभाल। हम 24/7 असिस्टेड लिविंग, रजिस्टर्ड नर्सिंग, रेस्पाइट केयर और हेल्दी एजिंग एक्टिविटीज भी प्रदान करते हैं। हम माई एज केयर, NDIS और प्राइवेट केयर विकल्पों के माध्यम से आपकी पूर्ण सहायता करते हैं। श्री ओम केयर, जहां देखभाल परिवार जैसी लगती है। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 1300-908-681 या फिर वेबसाइट विजिट करें shriomk.org.au। धन्यवाद।
1: You can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au.
2: आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारी वेबसाइट dapanradio.org.au पर देख सकते हैं।
3: श्रोताओ, एक कहानी के माध्यम से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखें आपको कैसी लगती है। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था, आसमान हल्का नारंगी था और कुछ सर्दी के कारण थोड़ा सुनसान था। मोहल्ले में एक सामान्य परिवार था। माँ बाप व बड़ी बहन एवं छोटा भाई राहुल हमेशा ही स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखने वाला बच्चा, सोशल मीडिया से भी सलाह लेता रहता था। इस शाम वह अकेला दौड़ने के लिए चला गया। जी, वह अकेला दौड़ने गया। कुछ देर बाद एक फ़ोन आता है, फिर एक विश्वास की खबर, फिर अस्पताल और फिर वह खबर जिसे कोई माता पिता सुनना नहीं चाहते हैं। उसकी दौड़ आज समाप्त हो चुकी थी। देखने की हर वह चीज़ जिसे उसकी आहट की प्रतीक्षा कर रही थी, उसका कमरा वैसा ही था। जूते भी वहीं रखे थे, उसका क्रिकेट का बल्ला, सब कुछ वहीं था, पर अब कोई वह जूते पहनने वाला नहीं था और ना ही बल्ला उठाने वाला था। राहुल की यात्रा की समाप्ति में आज की सोशल मीडिया का भी एक हाथ है। अपनी सेहत के में प्रोटीन का अत्यधिक मिश्रण, एक्सट्रीम एक्सरसाइज व औरों से सोशल मीडिया पर बराबरी ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया। आज माता पिता इस बात से गिलानी में हैं कि उन्होंने उससे सही तरीके से बात क्यों नहीं की। काश हमने लेक्चर देने के बजाय बातचीत की होती, प्रोत्साहन नहीं साथ दिया होता, निगरानी नहीं परवाह की होती या परवाह की भाषा बोली होती, बच्चों को कंट्रोल नहीं कनेक्शन चाहिए, एक छत में साथ में रहने से साथ नहीं होता है। हमें ये समझना ही होगा, बातचीत की शैली हो जिसमें प्रश्न कम वार्तालाप ज़्यादा हो, वरना वो सोशल मीडिया से सीखेंगे, यूट्यूब से समझेंगे और इंस्टाग्राम में अपनी पहचान बनाते हैं। ये आज के माता पिता के लिए शायद सच्चाई बन के रह चुकी है। आज उस बच्चे का फ्यूनरल है। हाँ, रेडियो के बाद में सीधा वहीं जाना है। समझ में नहीं आता है, या ऐसा भी कह सकते हो कि इस समय समझने की शक्ति नहीं है, सारी फिलॉसफी अंधेरी रह जाती है। ये भी आता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं इसमें बहुत बिलीव भी करता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने श्रोताओं से एक विनती करता हूँ कि अगर कोई फ़ोन करे और अपनी बात को भी हमारे साथ शेयर करें, क्या किसी के साथ में ऐसा हुआ है, कोई श्रोता हमें ये बता सकता है कि क्या कोई एक चीज़ ऐसी है संसार में जो या गलत है या सही है। और श्रोताओं, जैसे कि मैंने बोला है कि इनाम भी है, तो पहली ऐसे है कि आप यह तो ये बता दीजिए कि क्या इस संसार में कोई एक चीज़ गलत है या कोई एक चीज़ सही है। जितने वालों को कृष्णावतारम पार्ट वन के पास मिलेंगे, दो लोग विनर होंगे। मुझे ये भी बताइए कि ये छोटी सी कहानी बनाने की कोशिश करी थी, वो कैसी लगी आपको, आपकी इसमें क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। एक हम आपको आज के गाने भी कुछ इसी तरीके के होंगे, तो मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, उसका इंतज़ार है।

0: Curry Master's complete curry mix available at all leading spice shops.
1: श्रोतो, एक ओशो की वार्ता आपको सुनवाना चाहता हूँ जिन्होंने एक पेरेंटिंग के ऊपर लिखी है. बताइए आपको कैसी लगी.
2: बच्चों को अंतर्मुखी कैसे बनाया जाए. पहली तो बात यह है कि बच्चों को कैसा बनाया जाए, इसकी बजाय हमेशा ये सोचना चाहिए खुद को कैसा बनाया जाए. हमेशा हम ये सोचते हैं कि दूसरों को कैसा बनाया जाए. और मैं ये भी आपसे कहूं कि वही व्यक्ति ये पूछता है कि दूसरों को कैसे बनाया जाए जो खुद ठीक से बनने में असमर्थ रहा है. अगर उसके खुद के व्यक्तित्व का ठीक ठीक निर्माण हुआ हो तो जीवन के जिन सूत्रों से उसने खुद को निर्मित किया है, खुद के जीवन में शांति को, स्वयं को पाने की दिशा खोजी है, खुद के जीवन में संगीत पाया है, उन्हीं सूत्रों से, उन्हीं सूत्रों के आधार पर वो दूसरों के निर्माण के लिए भी अनायास अवसर बन जाता है. लेकिन हम पूछते हैं कि बच्चों को कैसे बनाया जाए. इसके पीछे पहली तो बात ये समझ लें कि आपकी बनावट कमजोर होगी, ठीक ना होगी. और ये भी समझ लें कि किसी दूसरे को बनाना डायरेक्टली सीधे सीधे असंभव है. हम जो भी कर पाते हैं दूसरों के लिए वो बहुत इनडायरेक्ट, बहुत परोक्ष, बहुत पीछे के रास्ते से होता है, सामने के रास्ते से नहीं. कोई माँ अपने बच्चों को बनाना चाहे, किसी खास ढंग का अंतर्मुखी बनाना चाहे, सत्यवादी बनाना चाहे, चरित्रवान बनाना चाहे, परमात्मा की दिशा में ले जाना चाहे, तो इस भूल में कभी ना पड़े कि वो सीधे सीधे बच्चे को परमात्मा की दिशा में ले जा सकती. क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति को किसी दिशा में ले जाने लगते हैं, उसका अहंकार, उस व्यक्ति का अहंकार, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, हमारे विरोध में खड़ा हो जाता. क्योंकि दुनिया में कोई भी घसीटा जाना पसंद नहीं करता, छोटा बच्चा भी नहीं करता. जब हम उसे ले जाने लगते हैं कहीं और कुछ बनाने लगते हैं, तब उसके भीतर उसकी अहंता, उसका अहंकार, उसका अभिमान हमारे विरोध में खड़ा हो जाता. वो सख्ती से इस बात का विरोध करने लगता है, क्योंकि ये बात उसे आक्रामक, एग्रेसिव मालूम पड़ती है. इसमें आक्रमण है और इस आक्रमण का वो विरोध करने लगता है. छोटा बच्चा है, जैसे उससे बनता है वो विरोध करता है. जिस जिस बात के लिए इंकार किया जाता है वही वही करने को उत्सुक होता है. जिस जिस बात से निषेध किया जाता है वही वही जाता है. जिन जिन रास्तों पर रुकावट डाली जाती है वही रास्ते उसके लिए आकर्षक हो जाते हैं. फ्रायड एक बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ, अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ एक दिन बगीचे में घूमने गया. जब सांझ को वापस लौटने लगा, अंधेरा गिर गया, तो देखा दोनों ने कि बच्चा कहीं नदारत है. फ्रेड की पत्नी घबराई, उसने कहा कि बच्चा तो साथ नहीं है, कहां गया. बड़ा बगीचा था, मीलों लंबा, अब रात को उसे कहां खोजेंगे. फ्रेड ने क्या कहा, उसने कहा तुमने उसे कहीं जाने को वर्जित तो नहीं किया था, कहीं जाने को मना तो नहीं किया था. उसकी स्त्री ने कहा हाँ मैंने मना किया था, फवारे पर मत जाना. तो उसने कहा सबसे पहले फवारे पर चल के देख लें, 100 में 99 मौके तो ये हैं कि वो वहीं मिल जाए, एक ही मौका है कि कहीं और हो. उसकी पत्नी चुप रही, जाके देखा वो फवारे पर पैर लटकाए हुए बैठा हुआ था. उसकी पत्नी ने पूछा कि ये आपने कैसे जाना. उसने कही तो सीधा गणित है, माँ बाप जिन बातों की तरफ जाने से रोकते हैं वे बातें आकर्षक हो जाती हैं. बच्चा उन बातों को जानने के लिए उत्सुकता से भर जाता है कि जाने. जिन बातों की तरफ माँ बाप ले जाना चाहते हैं बच्चे की उत्सुकता समाप्त हो जाती है, उसका अहंकार जग जाता है, वो रुकावट डालता है, वो जाना नहीं चाहता. आप ये बात जान के हैरान होंगी कि इस तथ्य ने आज तक मनुष्य के समाज को जितना नुकसान पहुंचाया है किसी और ने नहीं. क्योंकि माँ बाप अच्छी बातों की तरफ ले जाना चाहते हैं, बच्चे का अहंकार अच्छी बातों के विरोध में हो जाता है. माँ बाप बुरी बातों से रोकते हैं, बच्चे की जिज्ञासा बुरी बातों की तरफ बढ़ जाती. माँ बाप इस भांति अपने ही हाथों अपने बच्चों के शत्रु सिद्ध होते हैं. इसलिए शायद कभी आपको ये ख्याल ना आया हो कि बहुत अच्छे घरों में बहुत अच्छे बच्चे पैदा नहीं होते, कभी नहीं होते. बहुत बड़े बड़े लोगों के बच्चे तो बहुत निकम्मे साबित होते. गांधी जैसे बड़े व्यक्ति का एक लड़का शराब पिया, मांस खाया, धर्म परिवर्तित किया, आश्चर्यजनक है. क्या हुआ ये. गांधी ने बहुत कोशिश की उसको अच्छा बनाने की, वो कोशिश दुश्मन बन गई. तो एक बात तो ये समझ लें कि जिसको भी परिवर्तित करने का ख्याल उठे, पहले तो स्वयं का जीवन उस दिशा में परिवर्तित हो जाना चाहिए. तो आपके जीवन की छाया, आपके जीवन का प्रभाव बहुत अनजान रूप से बच्चे को प्रभावित करता है। आपकी बातें नहीं, आपके उपदेश नहीं, आपके जीवन की छाया बच्चे को परोक्ष रूप से प्रभावित करती है और उसके जीवन में परिवर्तन की बुनियाद बन जाती है। और दूसरी बात, बच्चे को कभी भी दबाव डालकर, आग्रह करके किसी अच्छी दिशा में ले जाने की कोशिश मत करना। वही बात अच्छी दिशा में जाने के लिए सबसे बड़ी दीवार हो जाएगी। और हो भी सकता है जब तक वो छोटा रहे आपकी बात मान ले, क्योंकि कमजोर है। और आप ताकतवर हैं, आप डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, आप हिंसा कर सकते हैं उसके साथ। और ये मत सोचना कभी कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ कैसे हिंसा करेंगे। माँ बाप ने इतनी हिंसा की है बच्चों के साथ जिसका कोई हिसाब नहीं है, दिखाई नहीं पड़ती। जब भी हम किसी को दबाते हैं तब हम हिंसा करते हैं। बच्चे के अहंकार को चोट लगती है, लेकिन वो कमजोर है, सहता है। आज नहीं, कल जब वो बड़ा हो जाएगा और ताकत उसके हाथ में आएगी, तब तक आप बूढ़े हो जाएंगे, तब आप कमजोर हो जाएंगे, तब वो बदला लेगा। बूढ़े माँ बाप के साथ बच्चों का जो दुर्व्यवहार है उसका कारण माँ बाप ही है। बचपन में बच्चों के साथ जो किया है बुढ़ापे में बच्चों के साथ करेंगे। इसलिए भूल के भी दबाव मत डालना, भूल के भी जबरदस्ती मत करना, भूल के भी हिंसा मत करना। बहुत प्रेम से, अपने जीवन के परिवर्तन से, बहुत शांति से, बहुत सरलता से बच्चों को सुझाना, आदेश मत देना। ये मत कहना कि ऐसा करो। जब भी कोई ऐसा कहता है ऐसा करो, तभी भीतर ये ध्वनि पैदा होती है सुनने वाले की कि नहीं करेंगे। ये बिल्कुल सहज है। उससे ये मत कहना ऐसा करो, उससे यही कहना कि मैंने ऐसा किया और आनंद पाया। अगर तुम्हें आनंद पाना हो तो इस दिशा में सोचना, उसे समझाना, उसे सुझाव देना। आदेश नहीं, उपदेश नहीं। उपदेश और आदेश बड़े खतरनाक सिद्ध होते हैं, उपदेश और आदेश बड़े अपमानजनक सिद्ध होते हैं। छोटे बच्चे का बहुत आदर करना, क्योंकि जिसका हम आदर करते हैं उसको ही केवल हम अपने हृदय के निकट ला पाते हैं। ये हैरानी की बात मालूम पड़ेगी। हम तो चाहते हैं कि छोटे बच्चे बड़ों का आदर करें, हम उनका कैसे आदर करें? लेकिन अगर हम चाहते हैं कि छोटे बच्चे आदर करें माँ बाप का, तो आदर देना पड़ेगा। ये असंभव है कि माँ बाप अनादर दें और बच्चों से आदर पालें, ये असंभव है। बच्चों को आदर देना जरूरी है, और बहुत आदर देना जरूरी। उगते हुए अंकुर हैं, उगता हुआ सूरज है। हम तो व्यर्थ हो गए, हम तो चुक गए, अभी उसमें जीवन का विकास होने को है। वो परमात्मा ने एक नए व्यक्तित्व को भेजा है, वो उभर रहा है, उसके प्रति बहुत सम्मान, बहुत आदर जरूरी है। आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक, खुद के व्यक्तित्व के परिवर्तन के द्वारा उस बच्चे के जीवन को भी परिवर्तित किया जा सकता है। अंतर्मुखी बनाने के लिए पूछा है, अंतर्मुखी तभी कोई बन सकता है जब भीतर आनंद की ध्वनि गूंजने लगे। हमारा चित्त वहीं चला जाता है जहां आनंद होता है। अभी मैं यहां बोल रहा हूं, अगर कोई वहां एक वीणा बजाने लगे और गीत गाने लगे, तो फिर आपको अपने मन को वहां ले जाना थोड़ी पड़ेगा, वो चला जाएगा। आप अचानक पाएंगे कि आपका मन मुझे नहीं सुन रहा है, वो वीणा सुनने लगा। मन तो वहां जाता है जहां सुख है, जहां संगीत है, जहां रस है। बच्चे बहिर्मुखी इसलिए हो जाते हैं कि वो माँ बाप को देखते हैं दौड़ते हुए बाहर की तरफ। एक माँ को वो देखते हैं बहुत अच्छे कपड़ों की तरफ दौड़ते हुए, देखते हैं गहनों की तरफ दौड़ते हुए, देखते हैं बड़े मकान की तरफ दौड़ते हुए, देखते हैं बाहर की तरफ दौड़ते हुए। उन बच्चों का भी जीवन बहिर्मुखी हो जाए। अगर वे देखें एक माँ को आंख बंद किए हुए और उसके चेहरे पर आनंद झरते हुए देखें, और वे देखें एक माँ को प्रेम से भरे हुए, और वे देखें एक माँ को छोटे मकान में भी प्रफुल्लित और आनंदित, और वे कभी कभी देखें कि माँ आंख बंद कर लेती है और किसी आनंद के लोक में चली जाती है, वे पूछेंगे कि ये क्या है, कहाँ चली जाती हो। वे अगर माँ को ध्यान में और प्रार्थना में देखें, वे अगर किसी गहरी तल्लीनता में उसे डूबा हुआ देखें, वे अगर उसे बहुत गहरे प्रेम में देखें, तो वे जानना चाहेंगे कि कहाँ जाती हो, ये खुशी कहाँ से आती है, ये आंखों में शांति कहाँ से आती है, ये प्रफुल्लता चेहरे पर कहाँ से आती है, ये सौंदर्य, ये जीवन कहाँ से आ रहा है। वे पूछेंगे, वे जानना चाहेंगे, और वही जानना, वही पूछना, वही जिज्ञासा फिर उन्हें मार्ग दिया जा सकता है। तो पहली तो जरूरत है कि अंतर्मुखी होना खुद सीखें। अंतर्मुखी होने का अर्थ है घड़ी दो घड़ी को 24 घंटे के जीवन में सब भांति चुप हो जाएं, मौन हो जाएं, भीतर से आनंद को उठने दें, भीतर से शांति को उठने दें, सब तरह से मौन और शांत होकर घड़ी दो घड़ी को बैठ जाएं। जो माँ बाप 24 घंटे में भी घंटे दो घंटे को मौन होकर नहीं बैठते, उनके बच्चों के जीवन में मौन नहीं हो सकता। जो माँ बाप घंटे दो घंटे को घर में प्रार्थना में लीन नहीं हो जाते हैं, ध्यान में नहीं चले जाते हैं, उनके बच्चे कैसे अंतर्मुखी हो सकेंगे। बच्चे देखते हैं माँ बाप को कलह करते हुए, द्वंद करते हुए, संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए, दुर्वचन बोलते हुए। बच्चे देखते हैं माँ बाप के बीच कोई बहुत गहरा प्रेम का संबंध नहीं देखते, कोई शांति नहीं देखते, कोई आनंद नहीं देखते, उदासी, ऊब, घबराहट, परेशानी देखते हैं। ठीक इसी तरह की जीवन की दिशा उनकी हो जाती है। बच्चों को बदलना हो तो खुद को बदलना जरूरी है। अगर बच्चों से प्रेम हो तो खुद को बदल लेना एकदम जरूरी है। जब तक आपके कोई बच्चा नहीं था तब तक आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं थी। बच्चा होने के बाद एक अद्भुत जिम्मेवारी आपके ऊपर आ गई। एक पूरा जीवन बनेगा या बिगड़ेगा और वह आप पर निर्भर हो गया। अब आप जो भी करेंगी उसका परिणाम उस बच्चे पर होगा। अगर वो बच्चा बिगड़ा, अगर वो गलत दिशाओं में गया, अगर दुख और पीड़ा में गया, तो उसका पाप किसके ऊपर होगा। बच्चे को पैदा करना आसान, लेकिन ठीक अर्थों में मां बनना बहुत कठिन है। बच्चे को पैदा करना तो बहुत आसान है, पशु पक्षी भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, भीड़ बढ़ती जाती है दुनिया में, लेकिन इस भीड़ से कोई हल नहीं है। मां होना बहुत कठिन है। अगर दुनिया में कुछ स्त्रियां भी मां हो सके तो सारी दुनिया दूसरी हो सकती है। मां होने का अर्थ इस बात का उत्तरदायित्व कि जिस जीवन को मैंने जन्म दिया है, अब उस जीवन को ऊंचे से ऊंचे स्तरों तक, परमात्मा तक पहुंचाने की दिशा पर ले जाना मेरा कर्तव्य है। और इस कर्तव्य की छाया में मुझे खुद को बदलना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति भी दूसरे को बदलना चाहता हो उसे अपने को बदले बिना कोई रास्ता नहीं।
1: श्रोताओं, ये कैसी लगी वार्ता?

अनाउंसमेंट है और हम इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर भी हैं। स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया प्रोडक्शन मंजू मिंत्रा प्रेजेंट रफ़ी फॉर एवर, ए स्पेक्टुलर म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू द लेजेंडरी मोहम्मद रफ़ी साहब, कमिंग टू सिडनी ऑन संडे 14th जून एट द रेजेंसी फंक्शन सेंटर ओबन। रिनाउंड मुंबई सिंगर प्रशांत राव सेलिब्रेटेड फॉर हिज सोलफुल रेंडिशन ऑफ रफ़ी सॉन्ग विल हेडलाइन द इवनिंग अलोंगसाइड टैलेंटेड वोकलिस्ट ध्वनि मुले राव। अपने अकंपनिंग देम विल बी अक्लेम्ड सैक्सोफोनिस्ट विकास गौतम, ट्रैवलिंग स्पेशली फ्रॉम इंडिया फॉर दिस ग्रैंड कंसर्ट। सिडनी ऑडियंस विल आल्सो एंजॉय परफॉर्मेंस बाय लोकल फेवरेट्स लीड फीमेल वोकलिस्ट शर्ली एंजेला डिसूजा, सादिक रहमानी एंड अबजी सरकार, सपोर्टेड बाय रिनाउंड जज्बा बैंड। द इवनिंग विल बी म्यूजिकली होस्टेड बाई मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट अभिजीत सरकार विद पोएटिक एम्क्रीनिंग बाई इंदिराज सिन्हा। फॉर लवर्स ऑफ टाइमलेस बॉलीवुड क्लासिक रफ़ी फॉर एवर प्रोमिसेस एन अनफॉरगेटेबल इवनिंग सेलिब्रेटिंग द इम्पोर्टेंट मेलोडीज ऑफ मोहम्मद रफ़ी। टू कीप द डेट फ्री एंड बुक योर टिकट गो टू eventbaba.com.au। रफ़ी फॉर एवर। तो श्रोताओ, इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाएगा और अगले हफ्ता हम कोशिश करेंगे कि उनके एक जो ऑर्गेनाइजर हैं उनसे हम बात भी करें। श्रोताओ, हम चाहते हैं कि कुछ लोगों से बात भी की जाए और ख़ास तौर पे हम एक माँ को अभी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, देखो कैसे जाता है।

0: हेलो यतीन जी,
1: शर्मिली जी, दर्पण रेडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
0: थैंक यू।
1: तो
0: बहुत अच्छा लगा ये सुन के आज सुबह से। ऑल्दो द टॉपिक दैट यू हैव चोजन इज वेरी हार्टफेल्ट, बट थैंक यू।
1: एक माँ को मैंने कहा कि फ़ोन करा जाए, और जो अब तक मैंने कोशिश करी है वो कैसा लगा आपको? टॉपिक कैसे लगा? शुड बी टॉक ऑन रेडियो?
0: एब्सोल्युटली मोर वी टॉक अबाउट बेटर इट इज। क्योंकि एक तो मैं चाहती हूँ बोलने के लिए कि आई एम श्योर वी ऑल हैव हर्ड दैट इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड।
1: यस यस,
0: राइट। और हम यहाँ पे पर्टिकुलरली जो हमारे माइग्रेंट्स, हम जो हमारे डिफरेंट कंट्रीज छोड़ के यहाँ पे आते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस वी आर नॉट लकी टू हैव अ फैमिली अराउंड अस।
1: जी।
0: तो अकेले मम्मी पापा ही बच्चों को रेज करते हैं, और हमारे पास स्कूल कॉलेज में डिग्री होते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, हम इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, अकाउंटिंग बनते हैं, वेब डिजाइनर बनते हैं, सोशल वर्कर बनते हैं, बट पेरेंटिंग का कोर्स कौन कराता है हमें? हम हमारे मम्मी पापा को देखते हैं, बट वो सीख के हम हमारा खुद का इवॉल्व करके हम अपना पेरेंटिंग करते हैं। तो कोई गाइड बुक तो है नहीं। आई थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट, आई रियली टेक द पॉइंट दैट द प्रीवियस स्पीकर सेड अबाउट, यू नो, वी शुड लुक इनसाइड अस, रिफ्लेक्ट हाउ वी आर, व्हाट वी आर पोर्ट्रेइंग। बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक मेनी पेरेंट्स विल अग्री विद मी, we are doing an extremely difficult job.
1: बात आपकी सही है शर्मिले जी, लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि बच्चे देखते ज्यादा हैं, सुनते कम हैं। आप इससे एग्री करती हैं?
0: एब्सोल्युटली 100%।
1: क्योंकि अगर हम कुछ कहते हैं और करते कुछ और हैं, जैसे हम समझो ये बोला कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम खुद झूठ बोलते हैं, वो बच्चा देख लेता है कि झूठ बोल रहे हैं, तो उसका क्या असर पड़ेगा? आपकी पेरेंटिंग तो फिर जीरो हो गई।
0: एब्सोल्युटली। आप रोल मॉडल, पेरेंट्स आर द फर्स्ट रोल।

0: मॉडल्स फॉर
1: जी
0: किड्स.
1: जी जी और जहाँ तक उसकी बात है कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि सारे बच्चे वैसे हो जाते हैं, काफ़ी बच्चे अपने माँ बाप के सुनते हैं और एक डिसिप्लिन रहता है। लेकिन एक आपने जो बहुत अच्छी बात बोली कि एक विलेज बच्चे को बनाता है, तो हम यहाँ पे दर्पण रेडियो के द्वारा यही कोशिश करते हैं कि समाओ एक हम परिवार बनाएं, एक बृहद परिवार बनाएं, जहाँ पे हम एक दूसरे के लिए खड़े हों, एक दूसरे के दुख और सुख में शामिल हों। ये हमारा प्रयास रहता है शर्मिली जी। और उसमें जैसे कि मान लो एक मोहल्ले में हम रहते हैं समझो, और वहाँ पे कोई यंग फैमिली आती है, नई फैमिली आती है, उसके पास आएं जाएं बैठें, एक थोड़ा सा दरवाज़ा खुला रखें। एक प्राइवेसी का इतना ज़्यादा हो चुका है कि हर घर में चार लोग हैं तो पांच कमरे हैं, और हर बच्चा हर आदमी अपने अपने कमरे में बंद है। और सोशल मीडिया के थ्रू हुई, अब आजकल सब कुछ होता है, माँ भी जब खाना बना लेती है तो फ़ोन करती है कि भाई खाना तैयार हो गया, आ जाओ, ऊपर से नीचे। तो वो होना है, आप कैसे देखते हैं इस बात को?
0: बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है वो. हम वी आर ऑलवेज इन क्रॉस रोड्स. मेरे खुद के घर पे आज तक मैंने कभी, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस, मेरा रूम का दरवाजा मैंने कभी बंद नहीं किया था. एग्जैक्टली द रीजन व्हाई वी आर टॉकिंग टुडे,
1: वाह।
0: कि आई एम द वन हु शुड सेट गो बाय माय एग्जांपल दैट आई सेट. बट अभी मेरे टीनेजर्स बॉय, and this is one point that I want to say this on, and firstly congratulations on bringing this radio family together. I think it's really important for us to have an external social family, and I think you're doing it, so hats off to you. Going back
1: जी
0: to my point, एक चीज जो आई वॉन्ट टू हाईलाइट कि फॉर मेनी ऑफ अस कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स,
1: जी
0: डिफरेंट
1: जी
0: कंट्रीज,
1: जी
0: आर किड्स, हमारे बच्चे जो यहाँ पे बड़े हुए, बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर, दे आर नेविगेटिंग मल्टीपल कल्चर्स, व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, व्हिच इज एन
1: जी सही
0: एडेड
1: बात है।
0: चैलेंज फॉर देम.
1: बहुत अच्छी
0: तो
1: बात है
0: ये
1: ये।
0: हमारे बच्चे, आई हैव नेवर क्लोज्ड माय डोर व्हेन आई ग्रो अप, तो आई वांटेड द सेम थिंग इन माय फैमिली, बट वो नहीं हो पा रहा है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स इट. बट मुझे मन में दुख होता है कि पता नहीं क्यों, क्या जरूरत होती है उनको दरवाजा बंद करने के, बट आई एम रिस्पेक्टिंग देयर प्राइवेसी. बोलने की ये है कि कभी कभार वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम, बीइंग अ पेरेंट इज वेरी डिफिकल्ट. क्या सही है, क्या गलत है, ओवर एंड अबव वी हैव टू लर्न एज पेरेंट्स कि हमारे कल्चर, जैसे हम बड़े हुए, इज नाउ बीइंग क्वेश्चन्ड बाय आवर चिल्ड्रन.
1: रियली ओ भाई।
0: Absolutely, what they think, what they are learning from their peers. आप जो टॉपिक पे आज बात कर रहे हो, हमारे बच्चे बहुत इन्फॉर्मड है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. दे आर वेरी वेल इन्फॉर्मड, मोर देन माई जनरेशन, हाउ आई ग्रो अप, दे आर वेल इन्फॉर्मड. तो दे आर चैलेंजिंग सम ऑफ द थिंग्स
1: एक
0: की
1: एक छोटा सा पॉइंट है शर्मिली जी, इन्फॉर्मेशन किस समय पे क्या मिली आपको? अगर चाइल्डहुड ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जाती है जिसमें चाइल्डहुड ही ख़त्म हो जाए, तो बेकार होगी वो इन्फॉर्मेशन, चाहे भले कितनी भी अच्छी है। जब चाइल्डहुड है तो उसमें उस समय की बातें अच्छी हैं, जब आप टीनेजर होते हैं तो उस समय की बातें अच्छी हैं, और जब आप शादीशुदा हो गए, शादी हो गई, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो उस समय की बातें अच्छी हैं। अगर बच्चे को आप टीनेजर वाले की तरफ लेके जाओगे या शादीशुदा की बातें करेंगे, तो वो रेलेवेंट नहीं हो जाएगा, कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो हो रही है उससे बहुत कुछ परेशानी हो रही है।
0: 100%, एब्सोल्युटली. तभी तो ना हम ईयर 12 का करिकुलम कोर्स थोड़ी ईयर 4 में पढ़ते
1: जी
0: हैं,
1: बिल्कुल।
0: नहीं पढ़ते हैं ना. एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग इज इम्पोर्टेंट, एंड दैट्स वेयर द क्रैक्स ऑफ द थिंग इज. मैं सुन रही थी आपका स्टोरी. मैं पहले स्पीकर, एज यू नो आई वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड लीड, एंड वी ट्रेन द वर्क फोर्स हु सपोर्ट्स यंग पीपल, चिल्ड्रन, फैमिलीज, एवरीथिंग यू नो एसोसिएटेड विद द सोशल कोहिजन ऑफ द सोसाइटी. तो मैं बार बार देखती हूँ कि इंफॉर्मेशन पहले मिलना इज नॉट द राइट थिंग.
1: एग्जैक्टली।